0: श्रोताजनों, ऑकलैंड श्री सत्य साई संस्था तरफ थी आप सबने अमारा जय साई राम। दर रविवारे सवारे 7 वाग्या थी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो। याद रखशो दर रविवारे सवारे 7 वागे 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय वाणी सांभळी कृतार्थ थवा प्रयत्न करशो। आ छे प्लेनेट FM 104.6।
1: Tired, worn out or broken? Matthew chapter 11 verse 28. Come to me all of you who are weary and burdened and I will give you rest.

जो मानव भक्ति के रास्ते पे होता है ना, उसको विश्व में कुछ और नहीं चाहिए होता। वह तो केवल अपने आराध्य देव के प्रेम में मगन हो जाता है। नेत्र खुले हों या बंद,

हर जगह उसको अपने आराध्य देव नजर आते हैं। सुबह से शाम तक की यात्रा, जो भी कार्य कर रहा हो अपने आराध्य देव को देखते हुए, इसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब्ड इन लव। लव क्यों बोल रहे हैं? लव का अर्थ है प्रेम। भक्ति का मतलब ही पागलपन है, भक्ति का मतलब ही प्रेम है, भक्ति का मतलब है लव फॉर गॉड, भगवान के लिए प्रेम। हालांकि अधिकतर लोगों ने परमात्मा को नहीं देखा या उसका आभास नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हृदय में टटोलने से पता लगता है, अनुभूति होती है परमात्मा की, अपने अंतर से आवाज आती है परमात्मा की, लेकिन हमारे कान उस तरफ मुड़ते ही नहीं है। हमारे कान बाहर की आवाज सुन रहे हैं, हमारे नेत्र बाहर देख रहे हैं, संसार की चकाकौन, हमारी नाक बाहर के सुगंध सूंघना चाहती है, हमारी जीभ जो है वो बाहर के भोजन को चखना चाहती है, हमारी त्वचा, हमारे हाथ स्पर्श करना चाहते हैं अच्छी वस्तुओं का, आकर्षित वस्तुओं का, मनचाही वस्तुओं का, हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर हैं। जिस दिन हम अपने अंतर में मुख मोड़ेंगे, जिस दिन हम अपनी इंद्रियों को मुड़ाव देंगे, विपरीत दिशा में ले जाएंगे अंतर की ओर, धीरे धीरे वह परमात्मा अपना स्वरूप आपको दिखाने लग जाएंगे। ये सत्य है। सो हम जो तुम हो वही मैं हूं, आई एम दैट, तत्वमसि, आई एम दैट। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम गॉड। कितने ऐसे वक्तत्व हैं, कितनी ऐसी स्टेटमेंट हैं, कितनी ऐसी डिक्लेरेशन हैं, घोषणाएं हैं, लेकिन शब्दों पे ना जाके प्रयास के द्वारा आभास कीजिए। शब्दों पे गौर कीजिएगा, प्रयास के द्वारा अभ्यास कीजिए। अभ्यास नहीं, आभास एक्सपीरियंस कीजिए। प्रयास का मतलब है एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, अर्थात पुरुषार्थ। लेकिन होता यह है कि हम अंतर की ओर जा नहीं पाते हैं। कारण, कारण यह है कि हमारा संग सही नहीं है। संघ का मतलब कंपनी, लोग कहते हैं कि हम तो भैया सत्संग में जाते हैं, हफ्ते में एक बार जरूर जाते हैं। अब सत्संग है क्या? सत्य का संग या भजन कीर्तन, माता की चौकी, सुंदरकांड का पाठ, या ऐसे लोगों से मिलना, हम कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल। विचार कीजिएगा, अगर आपके विचार दूषित हैं, प्रदूषित हैं, पोल्यूटेड हैं, और आप कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी तरह सोचते हो, एक शराबी दूसरे शराबी से मिलेगा, एक पियक्कड़ दूसरे पियक्कड़ से मिलेगा।

Yeah. एक स्मोकर दूसरे स्मोकर से मिलेगा तो क्या होगा? लाइक माइंडेड नहीं, राइट माइंडेड पीपल. राइट माइंडेड वो है जो आपको सही दिशा पर ले जाए. सत्संग का अर्थ है जो संग आपको सत्य की ओर लेकर जाए. असतो मां सद्गमया, अस्तो मां सद्गमया. लीड मी फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ, लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल. तमसो मां ज्योतिर्गमया, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. मृत्योर मां अमृतम गमया, लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी. जो सत्संग आपके जीवन में संबंध बनाने लग जाए, मोह पैदा करने लाए, वो सत्संग नहीं है. या द्वेष भी पैदा कर रहा हो, ईर्ष्या पैदा कर रहा हो, वो सत्संग है ही नहीं. सत्संग का अर्थ है यू स्टार्ट सीइंग द ट्रुथ, योर आईज बिकम ओपन, ड्रीम इज ओवर. आपके नेत्र खुल गए, आंखें खुल गई, सपना टूट गया. जब रात को आप सो रहे होते हैं, आप अपने एक सपन के अवस्था में होते हैं, ड्रीम स्टेट में होते हैं, उस समय आपको लगता है ये सपना सत्य है. आपको आभास भी नहीं होता, पता नहीं लगता कि सो रहे हैं आप. दैट सीम्स रियल. जैसे ही आपकी अचानक आंख खुलती है, एक क्षण के अंदर, विद इन ए मोमेंट, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो सपना था. इतनी इज अमेजिंग. वो सपना वहीं का वहीं धरा रह जाता है. हो सकता है आप कुछ समय तक उसकी बात कर लें घर वालों के साथ, वो आंख बंद करने के बाद वो सपना दोबारा में नहीं आने वाला. ये कहा जाता है अधिकतर ऐसा ही होता है. सपना क्योंकि सपना था, आप जानते हैं, हकीकत में आ गए हैं. कभी विचार किया आपने सपना देखा है ओनली फॉर फ्यू सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए मान लो. वो दर्शन के अंदर आपने 50 साल के, 100 साल के या 120 साल का जीवन जी लिया. आप पैदा भी हुए, बड़े हुए, लड़कपन से लेके जवानी से, जवानी से लेके बुढ़ापे तक पहुंच गए. आप पूरा जीवन जी लिया आपने 10 सेकंड के अंदर. इजंट इट अमेजिंग? हैरानी की बात नहीं है क्या ये? लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुली, आपका सपना टूट गया. दैट्स इट, इट्स ओवर. आपको विश्वास नहीं होता. वाओ भाई मेरे, जिस दिन आपकी आत्मा शरीर को छोड़ेगी, ये जीवन का सपना भी टूट जाएगा. उस समय आपकी ही आत्मा बोलेगी, ओ थैंक्स गॉड आई एम बैक होम. हे परमात्मा धन्यवाद, वापस घर आ गया. सत्संग का अर्थ है उन लोगों से मिलना, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के संगत में रहना जो आपको सत्य की ओर ले जाए. देखिए, विचार कीजिएगा थोड़ा. आप कभी अपनी कोई फोटो एल्बम को निकाल के बैठी है? आजकल तो कंप्यूटर में ही होती है. आप देखेंगे, ओ ये मैं हूं जब मैं 4 साल का था, ये मैं 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया.

और ये फोटो देखिए मेरी शादी की है, ये देखिए फोटो जब हम घूमने गए थे, ये देखिए मेरे बच्चों के साथ, मेरे पोतों के साथ। आप अपनी फोटो देख रहे हैं 4 साल की उम्र से लेके, हो सकता है उससे पहले से लेके, आपका विवाह भी हो गया, आपके बच्चे भी हो गए, उसके बाद उनके बच्चे भी हो गए। एक चीज आप नोट कीजिएगा, उस पूरी धारा के अंदर, सारी फोटोग्राफ के अंदर, उस स्ट्रीम ऑफ फोटोग्राफ के अंदर, उस प्रवाह के अंदर, जहां आपका जीवन जन्म से लेके आज तक का है, मान लीजिए आज जो मैं 85 साल की है, 85 ईयर्स के हैं, आप देखेंगे आपका शरीर बदलता गया है, शरीर छोटा था, बेबी था, शिशु था, बालक बना और बड़ा हुआ, करते करते प्रौढ़वस्था में आ गया, वृद्धावस्था में आ गया। द बॉडी हैज चेंज, जो शरीर आपका बचपन में था वो जवानी में नहीं, जो जवानी में था वो बुढ़ापे में नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक क्षण आपका शरीर बदल रहा है, आपके सारे सेल रिप्लेस हो रहे हैं। आपका मन जो छोटा बच्चा था वो चाहता था खिलौने से खेलना, ना खाने पीने की परवाह, ना कपड़े पहनने की परवाह, ध्यान था छोटे छोटे खिलौने के ऊपर, वो बड़ा प्रसन्न होता था। बड़ा हो गया तो उनको बाइसाइकिल चाहिए, कुछ और खिलौने चाहिए, और बड़ा हो गया वो स्पोर्ट्स खेलने लग गया, और बड़ा हो गया खिलौने बदल गए, बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले ली, अब और गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए। करते करते करते करते आपकी इच्छाएं बदलती गई, आपके मन की प्रवृत्ति बदलती गई, तो मन भी तो एक जैसा नहीं रहा आपका, एवर चेंजिंग। विचार कीजिएगा जरा आप, जो आपका विचार करने का, सोचने का तरीका था वो पहले डिफरेंट था, आज डिफरेंट है, पहले अलग था आज अलग है, दैट इज ऑल्सो चेंज, वह भी बदल गया। आपका शरीर वो नहीं है, आपका मन वो नहीं है, दोनों बदल गए हैं, तो इसलिए वो सत्य नहीं है। कहते हैं ट्रुथ नेवर चेंजेस, सत्य की परिभाषा यह है कि वह कभी बदलता नहीं है। शरीर बदल गया, आपका मन बदल गया, तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली, वह है आपकी आत्मा। आत्मा को ना कोई छू सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। आत्मा नहीं बदलती है तो वो सत्य है। तो सत्संग जो होता है आपको आपकी आत्मा की ओर लेके जाए। बाहर की यात्रा करने के लिए, संसारिक यात्रा करने के लिए, वर्ल्ड में जीने के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए, माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, पति पत्नी, बच्चे वगैरह वगैरह। लेकिन जब अंतर की यात्रा करते हैं, भीतर क्यों जाते हैं, आप अकेले ही जाते हैं। सत्संग से आती है संपूर्णता, उसे कहते हैं एलोननेस। लोनलीनेस नहीं कह रहे हम, एलोननेस कह रहे हैं। लोनली होता है अकेले पड़ जाना, अकेलापन, कहते हैं वेरी लोनली, मैं बड़ा अकेला पड़ गया हूं, अकेलापन सता रहा है। बड़े बड़े लोग

बुढ़ापे में आकर लोनली हो जाते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में अपने काम में निकल जाते हैं, किसी को एक दूसरे की परवाह नहीं है, ये व्यक्ति अकेला।